0: सबदंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ आपका मित्र अजीत। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: आंगन का पेड़ घर की शान, देता है छाया, सुख और सम्मान।
3: बहुत सुंदर था आपका सुविचार, बहुत ही शानदार। आप सबको हमारा बहुत बहुत आभार। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, राजस्थान से कानाराम चौहान जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
3: संजय मार्केंडी जी ने लिखा है, गुजरे सप्ताह हमने सुना दोस्त की पहचान, गौरा देवी और पहली उड़ान, ये भी जानिए मैं लाहौल स्पीति का शीत मरुस्थल। सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे। सभी उमंग कार्यक्रम के परिवार को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं हम।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
3: और ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
3: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। इस मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ढेर सारी जानकारियाँ,
2: इतिहास की, भूगोल की, साहित्य और विज्ञान के साथ साथ और भी अनेकानेक जानकारियाँ। तो अजीत जी, सप्ताह हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
3: विमलेश जी, आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जिनका उपयोग हम अपने जीवन में तो करते हैं, लेकिन उनके बारे में जानते बहुत कम है।
2: ऐसी कौन सी चीजें हैं भला?
3: विमलेश जी, वो चीजें हैं हमारे खनिज पदार्थ।
2: जी,
3: जरा सोचिए तो, क्या उनके बिना हमारा जीवन आसानी से चल पाता?
2: जी सचमुच, कोयला, लोहा, तांबा जैसे पदार्थों के बिना तो सचमुच हमारा जीवन ही कठिन हो जाए। तो श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे कुछ खनिज पदार्थों की। लेकिन अजीत जी, पहले ये तो जान लें कि खनिज पदार्थ किसे कहते हैं।
3: जी, ये तो हमें जानना ही चाहिए। देखिए, खनिज शब्द संस्कृत के खनी शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है धरती या धरती के भीतर का भंडार। इसी शब्द से खान या बोलचाल की भाषा में खदान निकला है।
2: जी श्रोताओ, खनिज को सरल शब्दों में यदि परिभाषित करें तो कहेंगे, प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह या अंदर से प्राप्त ऐसे पदार्थ जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण होते हैं, वे खनिज पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें खोद कर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं।
3: जी, तो विमलेश जी, ये तो हुई खनिज की बात। अब ये तो बताइए कि आज हम किस खनिज की बात करने जा रहे हैं?
2: अजीत जी, आज हम बात करेंगे कोयले की। ये बहुत जरूरी खनिजों में गिना जाता है। मानव सभ्यता के विकास में कोयले का बहुत महत्व रहा है।

0: ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत रहा है। अनेक ताप संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए इसका उपयोग होता रहा है। ये बहुत सारे उद्योगों का आधार है।
1: जी, हम इसे अर्थव्यवस्था का आधार भी कह सकते हैं। ये सब कुछ तो हम जानते हैं, लेकिन आइए अब बात करते हैं कि कोयला बनता कैसे है।
0: अजीत जी, एक बेहद रोचक बात मैं साझा करना चाहती हूँ।
1: जी जी।
0: वो ये है कि आज जिस कोयले को हम जलाते हैं, वो वास्तव में करोड़ों वर्ष पहले के जंगलों और पौधों का परिवर्तित रूप है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो कोयले में प्राचीन वनस्पतियों और प्राचीन सूर्य की ऊर्जा छिपी हुई है। यानी कोयले में ऊष्मा सूर्य से आई है।
1: जी, ये तो बड़ी रोचक बात आपने बताई, लेकिन ऐसा कैसे? जरा इस बात को विस्तार तो दीजिए, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे।
0: जी श्रोताओं, आइए आपको ले चलें आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले। हिमयुग के बाद धरती का तापमान बढ़ा और पेड़ पौधे उगने लगे। तब तक डायनासोर भी पृथ्वी पर नहीं थे, चारों ओर जंगल ही जंगल थे। दलदली भूमि, विभिन्न प्रकार के फर्न और घने पेड़ पौधे फैले हुए थे।
1: जी श्रोताओं, भूगर्भीय गतिविधियों और टेक्टोनिक प्लेट के सरकने के कारण बहुत भूकंप भी आते थे उन दिनों। भूकंप के कारण विशाल जंगल भूमि के नीचे दब गए।
0: जी,
1: वे कालांतर में मिट्टी और रेत के नीचे लगातार दबते चले गए। इतने नीचे कि मिट्टी ने उन्हें हवा से अलग कर दिया, जिसके कारण वे सड़ नहीं पाए, इसलिए उनमें सूर्य की अवशोषित ऊर्जा बनी रही।
0: समय बीतता गया, ऊपर मिट्टी और चट्टानों की परतें जमती रहीं, नीचे दबे जंगलों और पौधों पर अत्यधिक दबाव और ताप पड़ने लगा। कालांतर में उनका रूप बदलने लगा और उन वनस्पतियों ने कोयले का रूप धारण कर लिया।
1: जी विमलेश जी, इसीलिए वैज्ञानिक कोयले को दफनाया हुआ जंगल यानी बैरिड फॉरेस्ट भी कहते हैं। श्रोताओ, दरअसल आपके हाथ में जो कोयले का टुकड़ा है, वो करोड़ों वर्ष पहले पुराने प्राचीन जंगल का अवशेष है। यानी कोयले के रूप में हम प्राचीन पेड़ों की संचित ऊर्जा का उपयोग कर रहे होते हैं। हालांकि कोयले के जलने से वायु प्रदूषण होता है, इसीलिए दुनिया अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देने लगी है।
0: जी बिल्कुल सही। पर अजीत जी, अब जरा कोयले की उत्पत्ति की प्रक्रिया पर बात कर ली जाए। वैज्ञानिक रूप से ये कैसे होता है?
1: विमलेश जी, ये हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा सूर्य की ऊर्जा को अपने भीतर संचित करते हैं। प्राचीन पौधे कोयले में बदल गए क्योंकि हवा से संपर्क न होने के कारण उनका क्षय नहीं हुआ और उनके भीतर संचित सूर्य की ऊर्जा भी उनके साथ सुरक्षित रह गई। बताना चाहता हूँ कि कोयला प्रकाश संश्लेषण का एक प्रकार से समीकरण है।
0: जी, तो इसका अर्थ ये हुआ श्रोताओं कि जब हम कोयला जलाते हैं तो करोड़ों वर्ष पहले के सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा या गर्मी के रूप में मुक्त कर रहे होते हैं। तो अजीत जी, रोचक बात ये है कि कोयला मात्र एक खनिज नहीं है, लेकिन ये पृथ्वी के प्राचीन वन इतिहास का जीवित प्रमाण है।
1: जी विमलेश जी, बिल्कुल सही। इसीलिए तो हम कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल कहते हैं, क्योंकि ये जीवित पेड़ पौधों के रासायनिक अवशेष हैं।
0: जी।
1: तो श्रोताओ, ये थी मनोरंजक वैज्ञानिक कथा कोयले की उत्पत्ति की। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं?
1: आप हमारे प्रश्न का उत्तर और अपने संदेश हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे ईमेल पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: आप सोशल मीडिया पर भी यानी इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम सीखो।
0: ये संगीत कार्यक्रम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें कवि संदेश देता है कि हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीखना चाहिए।
1: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। फूलों से नित हंसना सीखो,
2: फूलों से नित हंसना सीखो,
1: भौरों से नित गाना,
2: भौरों से नित गाना,
1: तरु की झुकी डालियों से नित,
2: तरु की झुकी डालियों से नित,
1: सीखो शीश झुकाना,
2: सीखो शीश झुकाना,
1: सीख हवा के झोंकों से लो,
2: सीख हवा के झोंकों से लो,
1: कोमल भाव बहाना,
2: कोमल भाव बहाना,
1: दूध तथा पानी से सीखो,
2: दूध तथा पानी से सीखो,
1: मिलना और मिलाना,

0: सूरज की किरणों से सीखो,
1: सूरज की किरणों से सीखो,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
1: सूरज की किरणों से सीखो,
0: जगना और जगाना,
1: जगना और जगाना,
0: लता और पेड़ों से सीखो,
1: लता और पेड़ों से सीखो,
0: सबको गले लगाना,
1: सबको गले लगाना,
0: दीपक से सीखो जितना,
1: दीपक से सीखो जितना,
0: हो सके अंधेरा हरना,
1: हो सके अंधेरा हरना,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
1: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
1: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: सच्ची सेवा करना,
1: सच्ची सेवा करना,
0: जलधारा से सीखो आगे,
1: जलधारा से सीखो आगे,
0: जलधारा से सीखो आगे,
1: जलधारा से सीखो आगे,
0: जीवन पथ में बढ़ना,
1: जीवन पथ में बढ़ना,
0: और धुएं से सीखो हरदम,
1: और धुएं से सीखो हरदम,
0: ऊंचे ही पर चढ़ना,
1: ऊंचे ही पर चढ़ना।
0: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना बच्चों ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं, बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। श्रोताओ, अभी सुना आपने ये खूबसूरत गीत सीखो और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा मुख्य रूप से ये संदेश दिया गया है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए हमें सबका साथ चाहिए।
0: जी,
2: एक सुबह जंगली मुर्गा बोला, फिर चहके बाकी पंछी भी, धीरे धीरे करके फिर बोल उठे सारे पशु पक्षी। बहुत ही था न्यारा उस दिन का सवेरा, सारे जंगल वालों ने जब मिलकर ठाना था अपने जंगल में खोदेंगे तालाब बड़ा सा।

0: बारिश का मौसम था वैसे भी, भर सकता था ताल बड़ा सा भी।
1: खो देंगे भाई, खो देंगे, हम सब मिलकर एक बार, गर्मी में प्यासे न मरेंगे ना होंगे बेहाल।
2: बस अब थोड़ी देर करें आराम, फिर निपटाए जाए बाकी काम।
3: राजन, अभी बहुत सा काम बचा है, जल्दी निपटिए जाए यही अच्छा है। बारिश जाने कब हो जाए खत्म, जल्द खोद ले ताल, काम करें खत्म।
2: ठीक कहा हाथी तुमने, तो यही करो यही करो।
1: खोदेंगे भाई खोदेंगे, हम सब मिलकर एक ताल, गर्मी में प्यासे न मरेंगे ना होंगे बेहाल।
4: सब पशु पक्षी आओ आओ आओ, गाओ गाओ गाओ।
5: कौवे भैया, हम भी तो गर्मी में इससे प्यास बुझाएंगे, यूं ही नहीं पिएंगे, हम भी हाथ बटाएंगे। क्यों है ना कोयल बहन, कू कू।
6: हाँ चिड़िया बहन, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, ताल खोदना भी चाहती हूँ, पर काम क्या करूँ समझ नहीं आता। कू कू।
7: मेरा भी कुछ यही हाल है।
4: तो ये बात है, अच्छा बात मेरी तो मानो, करो वही जो करना जानो, काम काम काम।
6: क्या
7: क्या
6: क्या?
4: ऊंचा सब तक कोयल गाए,
6: कू, कू।
4: नीचा सब तक सब सुनाए, सबका तुम दो जोश बढ़ाना, तुम सब में उत्साह जगाना, काम।
2: हाँ हाँ, यही करो तुम दोनों।
6: जो आज्ञा महाराज।
5: दम लगा के कू।
7: हईशा।
5: दम लगा के कू।
7: हईशा।
4: काम काम काम। शाबाश शाबाश, सभी जुटे हैं, सभी कर रहे हैं काम। अरे पपीहा कहाँ है? करता होगा बड़ा आराम, चलू उसे भी ले आऊ मैं, ताल खोदना बहुत जरूरी, चलकर उसको समझाऊ मैं, काम काम काम। लो ये रहा पपीहा चुप्पा, बैठा गाल फुला कर कुप्पा, काम काम काम। अरे पपीहे, ऐसे क्यों बैठा है भैये, सारा जंगल झूम रहा है, अरे तू कैसा दुख मना रहा है, काम काम काम।
7: तंग मत कर तू मुझको कौवे, जा जा जा मुझसे बतियाने से पहले, अरे तू मुंह तो धोकर आ,
4: काम काम काम। मुंह भी धोकर आऊंगा मैं, पानी भी पीऊंगा जी भर, सबके संग मिलता लखोदने, मैं भी मदद करूंगा डट कर। अरे पपी है, अरे पपी है, तुम भी चलो कुछ मदद करो।
7: ताल खोदने में इस जंगल में खुदेगा तालाब, अरे वाह जनाब। ताल के अंदर मिट्टी होगी, पानी भी गंदा ही होगा, छी छी कौन पिएगा उसको, अरे काले कौवे मुझको बख्शो।
4: का का का।
0: कौवा मदद मांगने आया, पपीहे ने डांट कर उसे भगाया, रिमछिम रिमछिम बरखा आई, पपीहे ने झूम कर गाया।

0: やばい。パピーハナピエトジャバイ。
1: カンカンカン。あれ？イスネとバスラッヒパカルリ？
2: バウバウバウ。あれ？ये कौवे का मजाक उड़ा रहा है।
1: अरे
2: अरे ये तो इस तरह बोलता ही रहेगा। भाव भाव कोई इसे कुछ कहता क्यों नहीं।
1: गाँव गाँव गाँव कुत्ते देख नहीं रहे, शेर राजा भी तालाब खोद रहे हैं। अरे कुछ कहना होगा तो वो ही कहेंगे। गाँव गाँव शेर महाराज अब बहुत हो गया ये सब, आप ही इसे कुछ क्यों नहीं कहते।
3: मैं भी पपीहे की बात सुनकर थक गया हूँ। पपीहे सुन, पानी नहीं पिएगा तू इस ताल का, सबकी मेहनत से खुद कर जो बना अभी, तू इस ताल में भरने वाले पानी को छू तक सकेगा नहीं कभी।
2: इसकी यही सजा हो,
4: इसको यही दंड दो।
5: अब गर्मी का मौसम आ गया था, नदी नाले सब सूखने लगे, भयंकर लू चलने लगी।

0: जंगल में कहीं भी पानी नहीं था सिवाय इस तालाब के। सारे जंगलों के पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाने इस तालाब पर आने लगे।
1: गाँ, गाँ, अरे वो देखो, वो दूर के किसी जंगल से नील गाय आ रही है।
2: हाँ, और किसी जंगल में पानी नहीं है ना, सारे जानवर यहीं आ रहे हैं। भयानक गर्मी है ना
3: भाई। मैं तो ठहरा कछुआ, दिन रात इसी में पड़ा रहता हूँ ना, इसलिए सबकी बातें सुनता रहता हूँ। कोयल बहन ठीक कह रही है, सब बातें करते हैं और बताते हैं कि पानी कहीं भी नहीं है।
1: अरे कछुए भैया, दूसरे जंगलों के पशु पक्षियों को भी अपने यहाँ तालाब खोदने चाहिए। हाँ
3: हाँ, कल ही किसी जंगल का राजा शेर अपने लूमड़ मंत्री से कह रहा था कि हम भी मिलजुल कर अपने जंगल में तालाब खोदेंगे।
2: क्यों नहीं, मिलजुल कर काम करेंगे तो खोद लेंगे ऐसा तालाब। तुम हंस क्यों रहे हो कौए, क्या मैंने गलत कहा?
1: अरे नहीं नहीं कोयल, मैं तो ये सोच कर हंस रहा था कि कहीं उनके जंगल में भी पपीहे जैसा कोई हुआ तो क्या होगा। अरे प्यास से मर जाएंगे मगर हाथ नहीं हिलाएंगे।
2: बाप रे, मुझे तो उसका नाम लेते ही उसकी शक्ल नजर आ जाती है। वैसे वो क्या करता है आजकल, इतनी गर्मी में कैसे काम चलता है उसका?
3: हाँ, मैं भी हैरान हूँ। कभी कभी दूर से उसकी आवाज तो आती है रोने जैसे गाने की।
1: काँ, काँ। हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि जिधर से बरसात का आखिरी बादल गया था वो उसी ओर मुंह उठाए ताकता रहता है।

0: सुनो सुनो, दूर से उसकी दर्द भरी आवाज कैसी लग रही है।
1: और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, वो खुद ही है।
2: अच्छा अच्छा, हम पपी हैं के पास जा रहे हैं। कछुए भाई आकर बताएंगे तुम्हें कि वो क्या कह रहा था। आओ कोयल, चलो चले
0: चलो।
2: कोयल रानी चुपचाप वो सामने वाली डाल पर बैठकर सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है।
0: चलो
3: पिए दूजा पानी, कब आएगी बरखा।

0: ये मर गया?
1: क्या पता,
0: अभी अभी जान है लेकिन बिन पानी तो ये मर ही जाएगा।
1: चलो इसे उठाकर तालाब तक ले चलते हैं।
0: हाँ ये ठीक रहेगा।
1: पपी है, अरे देखो तो हम आए हैं तुम्हें लेने। बाहू कौआ, अरे उठो, आंखें तो खोलो भाई।
2: पानी,
1: अरे

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: Just plays it across to the onside. The fielder in hot pursuit but can't get to it. And that's a boundary onto the onside to the mid-on region.
1: ये लगा आभा का चौका।
2: तो एक और चौका ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए अब 53 पर। रनों की रफ्तार में कहीं कोई नियंत्रण दिखाई नहीं दे रहा। मुनी जिस तरह से उनकी निगाहें जमी हुई हैं, कोई भी स्ट्रोक खेलने में उन्हें परेशानी नहीं हो रही। अच्छा खासा तजुर्बा है मुनी के पास और उस तजुर्बे का यहां पर भरपूर लाभ लेते हुए बढ़िया चौका और मुनी पहुंच गई है 15 गेंदों पर 31 रन की व्यक्तिगत रन संख्या पर। क्लैक्सटन पहली गेंद पर चार दिया, दूसरी गेंद पर चार दिया और ये तीसरी गेंद क्लैक्सटन की, लेकिन चलिए वहां पर फील्डर मौजूद थी और इसलिए रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। शॉर्ट कवर पर गेंद फील्ड हुई। क्लैक्सटन का ये पहला ओवर है अब तक, अगर आप देखें तो चार गेंद पासों का इस्तेमाल किया है। हेनरी है, मैथ्यूज हैं, रमार्क हैं और इसके अलावा क्लैक्सटन। और जहां तक फील्ड प्लेसमेंट का सवाल है, ऑफ साइड पर एक अलग तरह का प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश क्लैक्सटन की, ऑफ स्टंप के काफी बाहर डाल दी गेंद। और जब आप इतनी विड़ देंगी तो ये चार लगेगा। बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई गेंद चार रनों के लिए।
1: ये लगा आभा का चौका।
2: ऑस्ट्रेलिया अब 57 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गेंद का इंतजार किया, बहुत ज्यादा विड़ दी थी प्रेम।
0: Very cleverly puts it across and uses the pace of the ball there and extends the bat to her left, far away from the body, in control of the shot and just plays it very late and the ball squeezes through the gap. That is a very well placed shot.
2: Claxton काफी खर्चीली साबित हो रही है, अब तक तीन चौके दे दिए उन्होंने इस ओवर में। बाएं हाथ से राउंड द विकेट और इस बार इस गेंद को निकाला फाइन लेग की दिशा में। हालांकि ये 2 रन बनेंगे वहां पर जब तक गेंद वापस पहुंचती, तो कुल मिलाकर 14 रन अब तक खर्च कर चुकी हैं क्लैक्सटन अपने इस पहले ओवर में। और ये विकल्पहीनता की स्थिति है, क्या कप्तान अगले ओवर में फिर क्लैक्सटन का इस्तेमाल करेंगी या गेंदबाजी में कोई परिवर्तन करेंगी? उनके पास विकल्प हैं लेकिन वो विकल्प कितने कारगर साबित होने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और वो भी तब जबकि आपने कोई बड़ा स्कोर खड़ा नहीं किया है। सिर्फ 67 रन चाहिए, 85 गेंदें बाकी, बार बार विड़ दे रही हैं और उसका बहुत सही इस्तेमाल गैप्स का। एक और चार।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: सो सिक्स वाज गॉन, 63 for 2, ड्रिंक्स ऑन द फील्ड बट मिजरी फॉर द वेस्ट इंडीज साइड। वन मस्ट से दैट 18 रन्स ऑफ द लास्ट ओवर फ्रॉम क्लैक्सटन, हु बोल्ड अ फर्स्ट ओवर इन दिस टूर्नामेंट and she was nowhere in the line of length and the batters prevailed and Mooney obviously making sure that she tormented the bowlers, pulverized the bowling attack. And Sanjay, something very interesting, the two most dangerous batters are on the field right now for Australia. You got Perry who's got a strike rate of 140 plus and you have got Mooney who's got a strike rate of 137 plus. Both of them, Perry had 2 half centuries and Mooney had 1 half century this particular series. So they are in a perfect mode to strike and why not?
2: बिल्कुल, खास तौर पर एलिस पेरी का अगर आप जिक्र करें और मूनी, ये दोनों काफी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। बेथ मूनी अपना 124वां मैच खेल रही हैं और एलिस पेरी 180वां मैच खेल रही हैं। तो ये बताता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज्यादा तजुर्बेकार खिलाड़ियों में आप शामिल करना चाहें तो ये प्लेयर्स निश्चित तौर पर हैं और ये दोनों सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर और अपना अनुभव जिस तरह से प्रदर्शित करती हैं और उस अनुभव का जिस तरह से अपनी टीम को लाभ देती हैं वो भी सचमुच काबिले तारीफ है।
0: एंड समटाइम्स आई वंडर आर वी मैच वाचिंग द सेम मैच ऑन द सेम फील्ड बिकॉज़ ऑन द सेम वेरी ग्राउंड वेस्ट इंडीज वाज स्ट्रगलिंग एंड यू फाइंड दीज टू बैटर्स मूनी एंड पेरी प्लेइंग ऑथेंटिक क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स, बोनाफाइड स्ट्रोक्स।
2: बिल्कुल प्रेम, मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को अगर आप एक टीम की जगह पर एक मशीन कहें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। उनके बैटर्स, उनके बोलर्स सब अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही खूबसूरती के साथ निभाते हैं और उन्हें पता है कि उन्हें करना क्या है। वो मशीन की तरह खेलते हैं चाहे मुकाबला कोई भी हो। आप 5 के 5 मैचेस लीग दौर के देख लें और उसके बाद ये छठा मुकाबला भी तकरीबन उसी तर्ज पर चलता हो।
0: एब्सोल्युटली, आई मीन नो अदर फैक्टर कैन रियली रीडिफाइन द गेम ऑफ क्रिकेट। एंड शमा सैनी सेज दैट इन ऑस्ट्रेलिया 63 for 2, इट्स गॉट 9 बाउंड्रीज, 36 रन ऑफ 4s एंड अ 6, सो यू कैन इमेजिन

0: ही है कि तुमसे शादी कर ले।
1: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
2: आभा
1: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
3: सातवां ओवर शुरू हो रहा है 64/2। ऐसा लगता है कि कुछ परेशानी संभवतः पेरी को और गार्टनर ने उनकी जगह ली है। फ्लेचर क्लैक्सटन की जगह गेंदबाजी में। फ्लेचर का जहां तक सवाल है, कुल मिलाकर 6 मैचेस में 4 विकेट, बेहतर इकोनॉमी, लेकिन आज उस इकोनॉमी का किस तरह से इस्तेमाल करती हैं। इस बार ऑफ स्टंप पर टप्पा डालने के बाद थोड़ा सा बाहर की ओर निकाला, बैकफुट पर गई, गेंद को खेला एकदम स्ट्रेट। हेनरी जब तक गेंद को फील करती दौड़ करके वहां पर रन पूरा किया। और जहां तक पेरी का सवाल है, रिटायर्ड हर्ट हो गई हैं और इसलिए उन्हें बाहर जाना पड़ा है। पिछला ओवर जो उन्होंने खेला था एलिने का, उस ओवर में ऐसा लगा कि वो बहुत सहज महसूस नहीं कर रही। सिर्फ इकलौता रन बना था, वो भी आखिरी गेंद पर, अन्यथा पहले 5 डॉट बॉल डाली थी एलिने ने और तमाम गेंदों का सामना पेरी ने किया था। तो कहीं ना कहीं शायद वो कुछ असहज महसूस कर रही थी और इसलिए उन्हें बाहर जाना पड़ा। उनकी जगह पर गार्डनर आई हैं बैटिंग के लिए। 66/2 फ्लेचर को लगाया गया है। फ्लेचर कितनी कारगर साबित होती है लेने के बाद। फ्लाइट कराने की कोशिश, ड्राइव किया हाफ बॉली पर लेकर के, बॉलर के नजदीक से बॉल निकली। कोशिश की थी फ्लेचर ने बॉल को अपने नियंत्रण में लेने की, लेकिन कामयाब नहीं, एक रन लेने से नहीं रोक सकी। इस एक रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 67/2 विकेट पर। पेरी का बाहर जाना थोड़ा सा परेशान करने वाला है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जिस स्थिति में है, ऐसा लगता है कि अगर उन्हें थोड़ी बहुत कोई परेशानी थी तो उनके लिए विश्राम ज्यादा बेहतर एक साधन हो सकता था। फ्लेचर, पहला ओवर है उनका, अब तक 2 गेंदों पर 3 रन दिए उन्होंने। पहला सेमीफाइनल विश्व कप T20 का 2026, जहां दूसरे सेमीफाइनल में इस मैच की विजेता टीम का मुकाबला होगा इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका की विजेता से। लेग स्टंप के बाहर थी, इस गेंद को खेलना चाहती थी, वाइड का इशारा आना चाहिए, आया, एक रन अतिरिक्त के तौर पर जुड़ा और अब 58 रन चाहिए 76 गेंदों पर। फ्लेचर की अगर आप गति देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं, तकरीबन 75-76 के आसपास, लेकिन उसके बाद भी अगर आप वाइड डालेंगी, नो बॉल डालेंगी तो वो परेशानी का सबब। पैरों पर बॉल डालने की कोशिश, कदमों का इस्तेमाल, हल्के से केवल दिशा दी और दौड़ करके एक रन पूरा कर लिया, बल्कि एक नहीं 2 रन जब तक गेम फील्ड होकर के आती, काफी वक्त था दूसरा रन दौड़ने का। तो काफी कॉन्फिडेंट बैटिंग है ऑस्ट्रेलिया की, कोई परेशानी नहीं और हल्के से केवल गेम को खेला। कुल मिलाकर 6 रन इस ओवर में एक वाइड को मिला करके, और इस बार हल्का प्लेस किया था।
4: 71/2 and 7.4 overs. Fletcher, who's got 4 wickets from 5 matches. But for the moment, the objective is to keep the batters silenced. You got Gardner, 4 matches and 112 runs. Strike rate being 169.6. So another batter with a very, very devastating kind of strike rate.
3: So Fletcher up to kul milakar 7 run de chuki. Unki ye game is bar fir flight karane ki koshish. Halka sa shuffle kiya. मिड विकेट की दिशा में गेंद को खेला, इकलौता रन, हर गेंद पर रन लेने की कोशिश। रनों की रफ्तार बनी रहेगी। एशले गार्डनर एक ऐसी बैटर जिन पर इस टीम को पूरी तरह से भरोसा है। 105वां मैच अपना खेल रही हैं गार्डनर, और भारत के खिलाफ क्या कमाल का प्रदर्शन रहा है इससे पहले। हालांकि पेरी ने भी 38 गेंदों पर 56 रन बनाए थे, और गार्डनर इस समय देखना है कि अपनी टीम के स्कोर को कहां तक ले जा सकती। 53 रन बनाकर नाबाद थी भारत के खिलाफ, 29 गेंदों पर वो 53 रन उन्होंने बनाए थे। बैकफुट पर कहीं इस बार गेंद को मोड़ा, इकलौते

0: के लिए 8 ओवर समाप्त। 8 ओवर के बाद 73 विकेट पर ऑस्ट्रेलिया।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: तो 9वें ओवर की शुरुआत हो रही है और अब सिर्फ 53 रन चाहिए 72 गेंदों से। गार्डनर 4 रन पर, मूनी खेल रही है एक अच्छी पारी, 45 पर पहुंच गई है मूनी और ये स्कोर उन्हें निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलिया की जीत में काफी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ऑफ स्टंप के बाहर थी, विट था और थोड़ी सी ओवर पिच थी, ड्राइव किया था गेम को लेकिन कैप्स नहीं तलाश पाई, सीधे प्लेयर के पास कोई रन नहीं।
2: 73 for 2 एंड दे आर क्रूजिंग एक्सेप्ट फॉर दैट वन ओवर व्हिच ऑलमोस्ट वेंट एज अ मेडन। पेरी वाज प्लेइंग दोस five deliveries as dot ball and thereafter immediately after that over she went back, she was uncomfortable. Some minor niggle around as here is Ellen coming into bowl over the wicket, straight run up and bowls outside the leg stump delivery. The batter wasn't in control of that one but plays it down onto the own side and crosses over for a single. Mooney goes up to 46. Should he get she get four more runs, this should be her second half century this World Cup. Well, one must say that she's been a very consistent batter with 138 almost as a strike rate, which is very encouraging. So now Australia need 52 of 70 deliveries, which looks very, very simple when you do the reverse countdown with 8 wickets in hand. So that should be a very positive motivation for the Australians who went on very competitive in this match. As here is Ellen coming into bowl, third delivery over the wicket. And that's width offered and the batter of the back foot plays it down into the back foot point region. The ball rushing to the fence, cruising past the field of 4 runs.
3: ये लगा आभा का चौका।
0: बिल्कुल परफेक्ट क्रिकेटिंग शॉट, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल, कदमों का इस्तेमाल, गेंद के ठीक पीछे गई और एक बढ़िया स्ट्रोक खेला सीधे 4 रनों के लिए।
2: व्हाट अ वेल प्लेस शॉट दैट वाज ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द पिच and Ellen couldn't believe it. Obviously, if you offer this kind of a width, who's going to spare you? That was almost like a hit me delivery, as here is she running in away from us over the wicket. Almost a slow delivery in the slot, but the batter wasn't able to cross the fielder there at whitish long off region, picked up there, but in the process they have scrambled for a single. Glasgow tried every bit of her effort to save the single but just couldn't do that because the non-striker had already called for the shot, the run there, because she was running, the striker was running to the danger end. So the call was absolutely well calibrated and a single taken. So Beth Mooney on 46 and those 4 runs.